0: हर चिलमन
1: चिलमन चिलमन
0: मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: नमस्कार. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज. तुमचा सकाळचे 10:54 झालेत आणि मंडई नगरचे अंतरंगामध्ये आपण गप्पा मारतो आहोत. आणि आज हिंदीचे आणि उर्दू भाषेचे प्रख्यात पंडित डॉक्टर शंकर अडकर यांचं डॉक्टर शंकर केशव अडकर यांची आहे पुण्यतिथी, स्मृती दिन आहे आणि त्याचबद्दल आपण गप्पा मारतो आहोत. त्यांच्या आठवणींना उजाळा देत आहोत आणि त्याचबद्दल आपल्यासोबत आत्ता गप्पा मारण्यासाठी आहेत आपल्याच अहिल्यानगरमधील नगर कॉलेजमधील हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर रिचा शर्मा. नमस्कार मॅम.
1: नमस्कार
0: मॅम. आज अडकर सर का स्मृति दिन है
1: जी,
0: इसके बारे में हम बात करें, उनकी जो यादें है वो ताजा करने का प्रयास आज हम कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ यादें है क्या उनकी?
1: ऐसा हुआ कि मैंने नगर कॉलेज ज्वाइन किया 99 में और उस समय हिंदी विभाग प्रमुख हरद्वानी सर थे. तो हरद्वानी सर ने मुझे थोड़ा सा बताया अडकर सर के बारे में और उन्होंने एक दिन कहा कि हम लोग चलेंगे सर से मिलने के लिए. अडकर सर से, अडकर सर उस समय आयुर्वेद हॉस्पिटल में ही रहा करते थे, अस्वस्थ भी थे और वहीं रहा करते थे. तो हरद्वानी सर के साथ मैं गई भी वहां पर, लेकिन सर की मतलब सर का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था तो मुझे तो वो बिल्कुल जानते ही नहीं थे और बहुत बात भी नहीं कर पा रहे थे. तो मैं बस इतना ही हुआ कि मैं देख के उनको वापस आ गई. लेकिन लगातार हरद्वानी सर से, डॉक्टर सुरेश कुमार जैन जी, डॉक्टर विश्वास राव काड़े जी, तो इन सब से लगातार अडकर सर के बारे में बहुत सारी बात सुनते रहते थे. तो वो थोड़ी सी जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि एक तो बहुत विनम्र थे. ये सब बताते हैं कि जब भी हम लोग कहें कि सर आना है तो आइए आप, और आज जिस स्थान पे भी हम लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ उनके विद्यार्थी हमेशा आया करते थे. और उर्दू और हिंदी के विद्वान तो थे ही और उसके लिए वो बहुत कार्य भी करना चाहते थे. और अपने समय में, यानी वो समय ऐसा था कि तब ये आज की जैसी सुविधाएं नहीं थी कि फोन हुआ करते थे कि हमने फोन कर लिया, मेल डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं था तब. तो वो पत्र लिखा करते थे, पोस्ट कार्ड, और पोस्ट कार्ड लिखते थे कि विद्वानों को, जैसे भगीरथ मिश्र जी थे इलाहाबाद से, कि आपका एक व्याख्यान रखना है, आप आइए यहाँ पे. तो वो कब उत्तर आता होगा उस पोस्ट कार्ड का, फिर वो कब वहां से चलते होंगे ऐसे.
0: हाँ.
1: तो ऐसे उन्होंने, लेकिन ये निरंतर अडकर सर प्रयास करते रहते थे और बहुत सारे हिंदी के विद्वानों को उन्होंने अहमदनगर कॉलेज में बुलाया. यानी उस समय के विद्यार्थियों के लिए बड़ी बात थी. आज हो सकता है शायद हमें ना लगे ये, लेकिन उस समय महाराष्ट्र में बैठा हुआ एक विद्यार्थी जो है वो उत्तर प्रदेश के या दिल्ली के विद्वान को सुन रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी. तो इस तरह से निरंतर वो प्रयास करते रहे. और उन्होंने, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित थे, डॉक्टर रामकिशोर शर्मा थे, भगीरथ मिश्र जी थे, जो भी विद्वान उनसे संभव हो सके उनको उन्होंने यहाँ पे बुलाया और अपने विद्यार्थियों के लिए. तो वो निरंतर प्रयास करते रहे और कॉलेज में भी उन्होंने हिंदी के लिए बहुत कार्य किए. तो ये ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि जो मैंने सुनी हुई हैं और आपके साथ आज शेयर की.
0: हाँ. और मैम हम मतलब सोच सकते हैं कि जो इनके बारे में हम इतना सुनते हैं, मतलब हमने कभी देखा भी नहीं, फिर भी सब लोग हमें मिलते हैं, उनके बारे में बताते, वो व्यक्ति कैसा होगा ये हम अब सोच सकते हैं, या उनका ज्ञान कैसा है, उनकी शिक्षा कैसी थी, वो और वो व्यक्ति कैसे थे, ये हमने देखा
1: और
0: सुना है.
1: देखिए आज भी हम उनको याद कर रहे हैं.
0: हाँ,
1: है ना. तो आज हम उनको याद इसीलिए कर रहे हैं कि उनका कृतित्व इतना अधिक रहा, उनका काम करना, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व. तो एक शिक्षक जो है, मतलब मेरा मानना ऐसा होता है कि सिर्फ वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता है. एक शिक्षक जो होता है वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, वो जब अपनी कक्षा में खड़ा होता है तो उसके ज्ञान के साथ उसका जो व्यक्तित्व होता है ना, उसका एक प्रभाव पड़ता है और उससे बच्चे बहुत सारी चीज सीखते हैं. मतलब जैसे अगर हम लोग भी अपना याद करते हैं तो मुझे याद है कि हाँ, ये टीचर अच्छी लगती थी.
0: हाँ.
1: तो वो टीचर अच्छी लगती थी, मतलब पढ़ाने के साथ साथ और बहुत सारी चीजें, उनका बोलने का तरीका, उनकी भाषा, और कभी कुछ तकलीफ हो गई तो उनका स्नेह, उनका प्यार, ऐसी सारी चीजें.
0: हाँ.
1: तो ये सब निश्चित रूप से अडकर सर में रही होंगी. इसलिए उनके विद्यार्थी काड़े सर हैं, हमारे साथ आए हुए थे अभी, और जैन सर हैं. तो ये सब विद्यार्थी निरंतर उन्हें याद करते और हमारा प्रयास रहता है कि थोड़ा और बोल सकते हैं आपको. हाँ, आडकर ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने कुछ गतिविधियां शुरू की हैं, सर की स्मृति में ही आडकर ट्रस्ट है, तो उसके लिए अहमदनगर कॉलेज का हिंदी विभाग और आडकर ट्रस्ट, इसका हम लोगों ने MOU किया और उसके वो साथ मिलके हम कुछ गतिविधियां करते हैं। जैसे एक पिछले वर्ष हम लोगों ने हिंदी कविता और लघु कथा प्रतियोगिता की थी और वो भी आयोजित की हम लोगों ने, और जो कार्यक्रम करते हैं जैसे भी हाल ही में 29 मई को एक संगोष्ठी हुई, राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई लघु कथा, तो वो भी आडकर ट्रस्ट, स्नेहालय और मैंने, मतलब उसमें कॉलेज नहीं था लेकिन आडकर ट्रस्ट और स्नेहालय के साथ मिलके वो एक संगोष्ठी आयोजित। यानी मेरा कहना है कि आडकर सर को तो हम याद करते ही हैं, उसके साथ साथ हम इस आडकर ट्रस्ट के माध्यम से हमारा प्रयास, हम सबका ये रहता है कि गिरीश सर का भी, हम सबका प्रयास ये रहता है कि सर जो चाहते थे वो चीज़ें जो हैं वो आगे होनी चाहिए, विशेष रूप से हिंदी और उर्दू भाषा के संदर्भ में जो उनकी इच्छा थी कि इसमें हमेशा गतिविधियाँ होनी चाहिए, इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हम सबकी कोशिश है इसमें।
0: जरूर जरूर, और ये बहुत अच्छा है कि उनका जो सपना था वो हम आगे लेके जा रहे आडकर ट्रस्ट के माध्यम से जी, और उनकी यादें तो हमेशा साथ है ही, पर साथ में सपना भी लेके जा रहे हैं। तो मैम आज सर का स्मृति दिन है, तो उनके स्मृति का हम नमन करते हैं और यही रुकते हैं। आपने बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से, मतलब आप मिले भी नहीं हो फिर भी उनकी यादें आपके साथ है, बहुत अच्छा लगा सुनकर, आप आए हमसे बात करी ये भी अच्छा लगा, धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: तर मंडळी आताच आपण नगर कॉलेज मधील हिंदी विभाग प्रमुख रिचा शर्मा, प्राध्यापक डॉक्टर रिचा शर्मा यांच्याशी गप्पा मारल्यात। आता वेळ झाली आहे तुमचा निरोप घेण्याची, थोड्याच वेळात तुमची लाडकी मैत्रीण आरजे ऋतू तुम्हाला भेटायला येणार आहे, त्यामुळे कुठेही जाऊ नका, ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात स्नेह वार्ता फक्त रेडियो नगर 90.4 एफएम वर।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: स्त्रियांना द्या इतका मान, वाढेल आपल्या देशाची शान। लेखक सागर चौगुले।

0: मंडई आडकर सरांचं जेवढं हिंदीवर प्रेम होतं तेवढंच त्यांचं उर्दूवर देखील प्रेम होतं. त्यांना उर्दू भाषा खूप आवडायची. डॉक्टर शंकर केशव आडकर यांचा स्मृती दिन आहे आणि त्यांचे काही विद्यार्थी त्यांचे काही सहकारी आपल्या सोबत आहेत जे सरांबद्दलच्या आठवणी आपल्याला सांगत आहेत. आता आपल्या सोबत आहेत प्राध्यापक सुरेश जैन. चला तर मग जाणून घेऊया सुरेश सरांकडून आडकर सरांबद्दलच्या काही आठवणी.
1: मैं सुरेश कुमार जैन डॉक्टर शंकर केशव आडकर जी का सन 1968 से लेकर 71 तक विद्यार्थी रहा हूँ. डॉक्टर शंकर केशव आडकर जी की हिंदी सुनकर ही मैंने हिंदी विषय को विशेष रूप में चुना था और उनका विद्यार्थी होने का मुझे बहुत गर्व है. हिंदी के साथ साथ उर्दू पर भी उनका समान रूप से अधिकार था और उनकी उर्दू सुनकर या गालिब के शेर सुनकर या अन्य उर्दू शायरों की बातें सुनकर मैं बहुत अचंभित होता था. और ये बात मैंने जब सुनी कि डॉक्टर आडकर जी ने जब एमए किया था तो पुणे विद्यापीठ में हिंदी के साथ साथ दो पेपर जो हैं ये दो पेपर अन्य भाषा के होते थे, तो डॉक्टर आडकर जी ने उर्दू भाषा को चुना था. और उस समय जब वो पेपर देने के लिए पुणे विद्यापीठ में गए तो उस समय डॉक्टर आडकर जी की वेशभूषा देखकर सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये उर्दू का पेपर देने के लिए कैसे आ गए. और उस समय लोगों ने पूछा भी उनसे कि आप शायद गलती से यहाँ पर आ गए होंगे, आपको संस्कृत का पेपर देना होगा. लेकिन आडकर जी ने कहा मैं सही जगह पर आया हूँ. और आश्चर्य की बात यह है कि डॉक्टर आडकर जी उस विषय में उर्दू में पुणे विद्यापीठ में सबसे पहले विद्यार्थी आए थे और ये मुझे बहुत आश्चर्य की बात लगी और साथ ही साथ गर्व की बात लगी. डॉक्टर आडकर जी कुछ कारणों से हम दो तीन विद्यार्थियों पर बहुत नाराज थे, लेकिन जब बीए की परीक्षा के बाद हम उनके यहाँ गए और उन्हें कहा कि ये विदाई समारोह का कार्यक्रम है, तो आडकर जी ने कहा मैं आपके इस कार्यक्रम में नहीं आऊँगा, आप चाहे तो अन्य लोगों को बुला लीजिए. लेकिन हमने कहा सर विदाई समारोह है और विदाई समारोह के अवसर पर अगर पिता ही उपस्थित नहीं रहेगा तो बेटी की विदाई कैसे हो सकती है. ये बात उनके मन को छू गई और उन्होंने आना स्वीकार किया और बहुत ही अच्छा वो विदाई समारोह का कार्यक्रम हुआ. धन्यवाद.
0: मंडई आताच आपण आडकर सरांचे विद्यार्थी प्राध्यापक सुरेश जैन यांच्याकडून सरांबद्दलच्या आठवणी जाणून घेतल्या.

0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात नगर डायरी, फक्त रेडियो नगर 90.4 एफएम वर।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

0: सज्जा आई गो ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो ये क्या हो गया
1: आई गो ये क्या हो गया
0: आई गो ये क्या हो गया
1: आई गो ये क्या हो गया
0: आई गो

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।